सतरे संगत में कदे निगल हरि भजन मेरा कदे निगियो सतरे संगत में कदे निगल हरि भजन मेरा ऊपर वाले जोयो जमारो माया जाल